नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान

0: विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপ রাও যাদব, তার বক্তব্য শুনলাম। এই মুহূর্তে মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আর এন রবিজি, উপস্থিত রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন অবশ্যই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। রেড রোডে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান এই মুহূর্তে সরাসরি
2: ভারত মাতা কি

0: মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
1: মহাশয়। And crores of people in lakhs of places are eager to listen to our beloved Honorable Prime Minister. His unwavering commitment towards preventive health care, holistic living, and human well-being continues to inspire millions around the world. It is now my privilege and profound honor to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the nation and the world on the occasion of International Day of Yoga 2026. ye mera param saubhagya aur atyant samman ka vishay hai ki bharat ke maniya pradhanmantri ji se vinamra anurodh karu ki ve antarrashtriya yog divas 2026 ke avsar par rashtra evan vishwa samuday ko sambodhit kare.
2: manch par virajman राज्यपाल श्री आर एन रवि जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव यादव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है. विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं. भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है. पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है. योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है. मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा. ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत. स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है. साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है. बंगाल की ये पवित्र

भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and keep and help to keep
lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे।

0: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चोखे खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था में आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए,
1: निजर जाएगा दाड़िए पड़ून।
0: हम सब आज का सत्र चालन क्रिया से शुरू करेंगे।
1: आज के हमारा चालन क्रियार माध्यम अधिवेशन टी शुरू करबो,
0: जिसे सूक्ष्म व्यायाम शीतलीकरण व्यायाम का नाम से भी बोला जाता है। यहाँ चालन क्रिया अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर में गर्माहट लेके आता है, उसके साथ साथ शरीर में लचीलापन शुरू उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम हम चालन क्रिया से

0: शुरू करेंगे, गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे।
1: घर सामने पीछे नहीं कोड़ा,
0: दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखे,
1: दुटो पायर माझखाने 2 इंची दूरत्व बजाय रखून,
0: दोनों हाथों को कमर पर रखिए,
1: दुटो हाथ के कोमरे ऊपरे रखून।
0: पहला अभ्यास गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास।
1: प्रथम अभ्यास घर सामने एवं पीछे झुकानोर,
0: श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर और गर्दन को आगे की ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा एवं घर के सामने दिखे झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए,
1: सांस नीते नीते पिछोनेर दिखे माथा झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: सांस नीते नीते स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे।
1: यही अभ्यास पुनरावृत्ति करून,
0: पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है, गर्दन पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास, राइट एंड लेफ्ट झुकाने का अभ्यास।
1: परवर्ती अभ्यास डाने एवं बामे कात करार,
0: श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को राइट साइड दाई के और झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा डान दिखे कात करान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: सामान्य अवस्था ही फिरे आसुन।
0: इस तरह हम बाएं तरफ भी अभ्यास करेंगे,
1: बाम दिख थे के वो एवं अनुशीलन टी अभ्यास करून,
0: पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है, और पूरा ध्यान गर्दन पे रहना है, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था ही फिरे आसुन।
0: अगला क्रिया गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास,
1: घर डाने एवं बामे घुरानोर अभ्यास।
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते अपना घर डान दिखे घुरान,
0: और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए,
1: सामान्य अवस्था ही फिर आसुन।
0: पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे।
1: यही अभ्यास थी,
0: श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए, और श्वास भरते हुए इस प्रक्रिया को कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे, पूरा ध्यान श्वास पर श्वास पर, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का,
1: परवर्ती अभ्यास घर घुरानोर।
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा सामने दिखे झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे,
1: सांस नीते नीते घोड़ी कांटार दिखे घूर्णन दिन,
0: और श्वास छोड़ते हुए सिर को पुनः आगे लेके आइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते सामने दिखे नियास।
0: एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रक्रिया में आंखें खुली रखना है, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जाइए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को नीचे। एक और बार
1: विपरीत दिख थे के अनुशीलन टी अभ्यास करून,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए, और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे,
1: कांधे एवं बाहुर आंदोलन।
0: जिसे भी कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए,
1: सांस नीते नीते दोनों हाथ के ऊपर नियासुन,
0: दोनों हाथों को हथेलिया बाहर की तरफ रहना है,
1: दोनों हाथेर तालु बाहर दिखे।
0: इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, पूर्ण श्वास प्रश्वास पर, धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में से ऊपर की ओर लेके जाइए हथेलिया का, और मुख बाहर की तरफ रहना है, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए।
1: सांस छाड़ते छाड़ते सामान्य अवस्था फिर आसन।
0: अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के बराबर लेके आइए।
1: आस्ते आस्ते दोनों कांध के हाथेर सामने
0: और हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए।
1: दोनों कोनों के भाज करुन।
0: दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए।
1: दोनों कोनों के छाती के सामने नियासुन।
0: और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए। श्वास प्रश्वास के साथ
1: धीरे धीरे गोलाकार आकृति तक घोड़ान।
0: पूरा ध्यान कंधों पे, कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, श्वास लेते हुए कोनी को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए।
1: सामान्य अवस्था ही फिर आसन।
0: अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर लेकर आइए।
1: दोनों पैर माझखाने कांधेर समान दूरत्व बजाय रखून।
0: दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके आइए कंधों के समानांतर।
1: दोनों हाथ के कांधेर समान सामने,
0: हथेलियों को मुख अंदर की तरफ रहे,
1: हाथेर दोनों तालु सामने दिखे।
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर से घुमाइए।
1: सांस छाड़ते छाड़ते शरीर के डान दिखे घोड़ान।
0: इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए।
1: सांस छाड़ते छाड़ते स्वाभाविक अवस्था फिर
0: इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे।
1: विपरीत दिशा से क्यों अपनी अभ्यसता करुन।
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। एक और बार इसका अभ्यास, दाई तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आइए।
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास हाटूर संचालन।
0: श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए।
1: सांस नीते नीते हाथ के छाती के सामने नियासुन।
0: हथेली का रुख नीचे की ओर रहना है,
1: हाथेर तालु नीचे दिखे।
0: श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए।
1: सांस छाड़ते छाड़ते दो हाथों के भाज करुन।
0: कुर्सी के ऊपर बैठे की स्थिति में आना है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए।
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आइए। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे।
1: एबार हमारा आसन अभ्यास शुरू कर दो।
0: पहला अभ्यास ताड़ासन।
1: प्रथम अभ्यास ताड़ासन।
0: दोनों पैरों के बीच में 2 इंची की दूरी बना के रखे।
1: दोनों पैर माझखाने 2 इंची दूरत्व बजाय रखून।
0: दोनों हाथों को कंधों के बराबर आगे से समानांतर लेके आइए।
1: दोनों हाथ के छाती के सामने कांधे समान नियासुन।
0: दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए।
1: दोनों हाथ के जोड़ो करुन
0: और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए।
1: बाहर दिखे घूरिए दिन हथेर तालु।
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए।
1: सांस नीते नीते हाथों को रेड़ दिखे,
0: हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास,
1: संभव होले गोराली रोपोट
0: संतुलन संतुलन बनाने का प्रयास। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए।
1: सांस छाड़ते छाड़ते हाथ नीचे
0: और सामान्य स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए,
1: आराम करुन।
0: अगला अभ्यास पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास पादहस्तासन।
0: जिसे भी हाइपर बीपी है, हर्निया है, हाइपर गैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए।
1: दोनों पैर माझखाने 4 इंची दूरत्व बचाए दिन।
0: दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से सिर के ऊपर उठाइए।
1: दोनों हाथ के सामने थे के माथा रोपोर निये जान।
0: और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए।
1: सांस छाड़ते छाड़ते कोमर থেকে झोंकान,
0: दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखने का प्रयास,
1: दोनों हाथ के पायर पास स्थापित करूं
0: और दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास,
1: दोनों हाथों के सोजा करने का प्रयास करूं।
0: इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके आइए,
1: सांस लेते लेते फिर आसुन
0: और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए और विश्राम कीजिए,
1: आराम करो।
0: अगला अभ्यास अर्धचक्रासन,
1: परवर्ती अभ्यास अर्धचक्रासन।
0: दोनों हाथों को कमर पर रखिए,
1: दोनों हाथ के कोमड़े ऊपर रखून
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए,
1: धीरे धीरे अपने बॉडी के पिछन दिखे झोंका।
0: इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रखना है,
1: ये अनुशीलन समय चोख दुटो खोला थाकबे
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन
0: और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे,
1: परवर्ती अभ्यास त्रिकोणासन।
0: दोनों पैरों के बीच में 3 या 4 फीट का अंतर बनाए रखिए,
1: दोनों पैर माझखाने 3 से 4 फीट दूरत्व बजाय रखून,
0: दोनों हाथों को बगल में से कंधों को समानांतर लेके आइए,
1: दोनों हाथ के कांधे समांतराल ले आसुन,
0: दाएं पैर को दाएं तरफ राइट लेग को राइट साइड घुमाइए,
1: डान पैर पाता डान देके घुड़िए दिन
0: और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते शरीर के डान देके झुकिए दिन,
0: राइट हैंड दायरे पैर पे पीछे की तरफ या टखनों पे स्थापित करें,
1: अपना डान हाथ पायर काछे स्थापित करूं
0: और सिर को ऊपर के आसमान की तरफ देखिए और थोड़ी देर इस अवस्था में रहिए,
1: विशाल का आकाशेर दिखे देखार चेष्टा करूं एवं ये अवस्थाएं बजाय थाकून
0: और श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्थाएं फिर आसुन,
0: राइट लेग को सीधा कीजिए। इस तरह दूसरे पैरों से भी अभ्यास करेंगे, लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ घुमाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड झुकाते जाइए, बाय लेफ्ट का बाय पैर पे रहना है और सिर को ऊपर की तरफ कीजिए और इस अवस्था में सामान्य स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आइए, पैर को सीधा कीजिए और हाथों को नीचे लेके सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए,
1: स्वाभाविक अवस्था ही फिर आसन।
0: अब हम बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे,
1: एवं हम बोसे कड़ा आसन को अभ्यास करबो,
0: धीरे धीरे से बैठ जाइए,
1: नीचे जाएगा बोसे पड़ो,
0: पैरों को सामने की तरफ सीधा कीजिए,
1: दोटो पाके सामने दिखे सोजा करूं,
0: दोनों हाथों को नितंब के पास सहजता से रखिए,
1: दोटो हाथ के नितंबर पास रखून,
0: कमर गर्दन सीधा रखे,
1: कुमोर एवं घर सोजा रखून,
0: इसको हम दंडासन कहते हैं,
1: एक दंडासन बोला है।
0: अब दंडासन के पश्चात हम आगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे,
1: परवर्ती अभ्यास भद्रासन।
0: जिसको भी घुटने में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से रूमेटॉइड आर्थराइटिस से घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन के स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए और दोनों तलवों को मिलाइए,
1: दोनों पायर पाता के एक संगे जोड़ो करून
0: और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए,
1: पायर आंगुल गुलों के हाथ दिए धरार चेष्टा करून,
0: एड़ियों को धीरे धीरे शरीर की तरफ खींचिए,
1: गोराली के निजे नितंबर काछे नियासर चेष्टा करून
0: और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास,
1: हाटू मेजर दिखे,
0: सिर गर्दन सीधा रखे और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए, दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए,
1: दोनों हाथ के पीछे नर्दी के निये जान
0: और दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर रखिए,
1: दोनों पायर माझखाने 1 फीट दूरत्व बजाय रखून,
0: गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखकर विश्राम कीजिए।
1: घर

0: दाई या बाएं करवट लेते हुए मंच की तरफ देखते हुए बैठ जाइए। सिर और गर्दन को सीधा रखे, शवासन से उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे,
1: पूर्ववर्ती अभ्यास कपालभाति।
0: जिसे भी हाई बीपी है, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे अवस्था में सावधानी के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन जो आपको सुख का अनुभूति देता हो, उस आसन में बैठ जाइए। सिर गर्दन सीधा रखें और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर स्थापित रखें।
1: जी कोनो ध्यान मुद्राएं बसुन, जेमन सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन एवं वज्रासन, एवं दुटो चोख के आलतो करे बंद करुन।
0: पहला चक्र 20 आवृत्ति के लिए हम शुरुआत करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए मांसपेशी को दबाते हुए श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए।

0: श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालाभाति का दूसरा चक्र हम शुरू करेंगे 20 आवृत्ति के लिए। गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित कीजिए। और श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास अनुलोम विलोम।
0: कमर गर्दन सीधा रखे, आंखें बंद रखे,
1: अपना कोमर एवं घाट सोजा रखन एवं चोक बंद रखन।
0: बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में बनाकर बाएं पैर पे रखिए।
1: बाम हाथ दिए ज्ञान मुद्रा बनिए, बाम हाथों ऊपर रखन
0: और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा करके
1: डान हाथ दिए प्राणायाम मुद्रा बनाने चेष्टा करो।
0: धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लीजिए और धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से पुनः अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और राइट नासिका रंध्र से श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आइए। और अब हम अगले अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास शीतली प्राणायाम।
0: दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें।
1: दोनों हाथ दिए ज्ञान मुद्रा बनिए, हाथों पर रखो।
0: जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार जीभ को बनाइए।
1: जीभ बाहरे बेर करे दो पास दिए पाखी टोटेर मतो आकृति दिन
0: और जीभ से गहरा श्वास अंदर खींचिए और धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास को अंदर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर की तरफ छोड़िए। यहां अभ्यास मन में शांति को प्रदान करता है, चिंता तनाव अवसाद जैसे बीमारियों को नियंत्रित करता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम।
0: षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, अंगूठे को कान को अंगूठे से कान को बंद कीजिए, सभी उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें।
1: वृद्धांगुली दिए कान एवं बाकी अंगुल दिए
0: नाक से श्वास

इसका अभ्यास एक और बार करेंगे. श्वास नाक से लीजिए और श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए.

एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न करते हुए बाहर की तरफ छोड़िए।

0: दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, आंखें बंद रखे, इस भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास। यहां एक प्राणायाम चिंता अवसाद ऐसे अवस्था को नियंत्रित करता है, अनिद्रा जैसे शिकायतों को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, आंखें बंद कीजिए।
1: এখন আমরা ধ্যানের অভ্যাস করব, দুটো চোখ বন্ধ করুন,
0: কমর গর্দন সিধা রাখে, দোনো হাতো সে জ্ঞান মুদ্রা ইয়া ধ্যান মুদ্রা কা ধারণ কিজিয়ে,
1: দুটো হাত দিয়ে ধ্যান মুদ্রা বানানোর চেষ্টা করুন,
0: কন্ধো কো শিথিল কিজিয়ে, আপনি শ্বাস পর পুরা ধ্যান কেন্দ্রিত কিজিয়ে, ধীমে আর গহরা শ্বাস লিজিয়ে আর ধীমা আর গহরা শ্বাস ছোড়িয়ে, शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, शरीर में उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन से तनाव को दूर करने का प्रयास। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए और निर्विचार होने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे ध्यान में लीन होने का प्रयास। मन ही मन में शांति का अनुभूति करने का प्रयास। अब हम अपने मन में मन संकल्प का धारण करेंगे, हमें अपने मन को प्रतिक्षण संतुलन रखने का प्रयास और संकल्प का धारण करने का प्रयास। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्वास के प्रति, शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। और धीरे धीरे दोनों हाथों को मिलाइए। अब हम शांति पाठ करके इस सत्र का समाप्त करेंगे। सिर गर्दन सीधा रखे, दोनों हाथों को मिलाइए, नमस्कार मुद्रा में।

0: अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयर लिनस्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित।

0: वितरित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
1: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3-4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
5: धन्यवाद भरत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: আজকের মতো লাইফ ফোন ইন কলকাকুলি এই পর্যন্তই। ছোট্ট বন্ধুরা সবাই খুব ভালো থেকো, কেমন? আকাশবাণী শিলিগুড়ি অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়াম ওয়েভ 711 কিলোহার্টজে, অর্থাৎ 421.9 মিটারে। এই অনুষ্ঠান শোনা যাচ্ছে নিউজ অন এআইআর অ্যাপের মাধ্যমেও। এখন শুনবেন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, থাকছে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক একটি অনুষ্ঠান, মানসিক স্বাস্থ্য ও রাজযোগ।
1: ये आकाशवाणी का शिलीगुड़ी केंद्र है। श्रोताओं, आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ हमारे भौतिक सुख बढ़ चुके हैं, लेकिन मानसिक शांति हमारे जिंदगी से मानो गायब हो चुकी है। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का साक्षात्कार का विषय है मानसिक स्वास्थ्य एवं राजयोग। हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं ब्रह्म कुमारी रंजना अग्रवाल। दीदी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: नमस्ते, शुक्रिया आपने हमें आमंत्रित किया। ओम शांति, नमस्कार। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत स्नेह और योगा दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तन मन धन की सुख मिले।
3: वाह, आपने बहुत अच्छा कहा कि सभी स्वस्थ रहें। तो दीदी, आज मानसिक स्वास्थ्य में इतना गिरावट क्यों हो रहा है?
2: आज सभी समृद्ध आंतरिक जीवन यानी कि जीवन की अच्छी गुणवत्ता चाहता है, लेकिन मन इच्छाओं से घेरे हुए शांति और खुशी के खोज में भटक रही है। नाम, मान,

0: आपने ये सही बताया,
1: भारत का मानसिक स्वास्थ्य काफी नीचे है। लगता है 2050 में हंसता हुआ कोई व्यक्ति मिल गया तो लोग उसे म्यूजियम में बिठा देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कोई झुकना नहीं चाहता, कौन पहला बोलेगा, ये अहंकार से हमारे मनोस्थिति बिगड़ती जा रही है।
0: अच्छा,
1: लोग इतना ज्यादा एनालिसिस करने लगे हैं कि दिमाग में पैरालिसिस हो रहे हैं। तनाव एक मानसिक वायरस है जो पूरे विश्व पर प्रभाव डाल चुकी है। आज 4 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि आंतरिक शक्ति यानी कि आत्मा बल छिन्न हो गई है और छोटी छोटी मामूली परिस्थिति भी संभाल नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल,
1: हर कोई भावनात्मक टाइम बॉम्ब, इमोशनल टाइम बॉम्ब लेकर घूम रहे हैं, जो कभी भी हार्ट अटैक, पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज के रूप में फट सकती है।
0: जी बिल्कुल,
1: आत्महत्या यानी कि सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। तनाव कम करने के लिए शराब, ड्रग्स, सिगरेट आदि का सहारा लेते हैं, जो अल्पकाल के विकल्प है, जो इंसान को शारीरिक मानसिकता से खोखला बना देती है।
0: जी बिल्कुल,
1: हर साल डॉक्टर्स 130 मिलियन दवाइयां देते हैं, जिसे ट्रैंकुलाइजर्स कहते हैं। ये सिर्फ एक कंट्रोल है। हमारी बीमारी 80% मानसिक है और खाली 20% शारीरिक होता है। आज हार्ट अटैक से पहले थॉट अटैक होता है।
0: जी बिल्कुल,
1: इसका कारण खुद का अव्यवस्थित जीवन शैली है। आज मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, न्यूज रील्स से हमारे मन कंफ्यूज हो गया है। अच्छा बुरा सभी तरह की घटनाएं, दूसरों की चकाचौंध भरी व्यर्थ नकारात्मक खबरें हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ईर्ष्या, तुलना और असुरक्षा की भावना पैदा करती है और हमारा मन एक डस्टबिन जैसा हो गया है। पास्ट और फ्यूचर की बातें से वर्तमान क्षण में जीना भूल गए हैं। विचारों का ट्रैफिक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो मेंटल ब्रेकडाउन या एंग्जाइटी अटैक होता है।
0: दीदी, आपसे बहुत कुछ हमने परिस्थिति के बारे में जाना, तो ये मानसिक स्वास्थ्य क्या है?
1: आमतौर पर लोग समझते हैं कि अगर कोई मानसिक बीमारी जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन आदि नहीं है तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्यता का अर्थ केवल बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि ये मन की वो स्थिति है जहां आप विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर, शांत और सकारात्मक रह सके।
0: जी,
1: हम झट से हलचल में ना आए, प्रतिक्रिया ना दिखाए और बाद में सही रिस्पॉन्स दे। बाहर कोई भी समस्या आ सकती है, जैसे अचानक नौकरी से निकाले जाना, रिश्तों में कड़वाहट, बिजनेस में घाटा, अन्य कोई नुकसान हो और आपका मन तुरंत विचलित ना हो बल्कि सही निर्णय लेने में सक्षम हो, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होता है, दूसरों के हाथ में नहीं।
0: जी बिल्कुल,
1: वो अपने स्वमान में स्थित रहेगा, कोई उसे जब चाहे हंसाया या जब चाहे रुला नहीं सकेंगे।
0: इसका मतलब दीदी, मानसिक स्वास्थ्य वो संभाव है, मतलब बैलेंस रखते हुए हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, अपने मन को एक वर्ल्ड कप का फुटबॉल नहीं बना देंगे कि सब लोग उसे जिधर चाहे मोड़ते रहें। अच्छा, इस संदर्भ में योग का भूमिका क्या?
1: बिल्कुल
0: है?
1: सही कहा आपने। महर्षि पतंजलि ने जब अष्टांग योग की रचना की तो उसमें 5 बाहरी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और 3 मानसिक, जिसमें ध्यान और एकाग्रता आता है। आसन केवल एक छोटा सा हिस्सा था। शारीरिक योग या हॉट योग शरीर को लचीला और ऊर्जावान बनाता है, लेकिन मन के घावों को भरने के लिए और आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए हमें राज योग, बुद्धि योग या ज्ञान योग की आवश्यकता होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: राज योग को योगों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों को बदलता है। ये योग हमें विचारों को नियंत्रण करने में मदद करती है और धीरे धीरे मानसिक रोग ठीक होता जाता है।
0: जी बिल्कुल,
1: राज योग से आंतरिक शक्ति बढ़ती है और हर समस्या छोटी नजर आती है। हमारी आंतरिक जीवन शैली एक राजकुमार की तरह सुरक्षित, संतुष्ट, निःशब्द आनंद, प्रेम और दया भाव से भरपूर हो जाती है।
0: इसका मतलब संतुष्टि हमारा मूल लक्ष्य है।
1: जी हाँ, संतुष्टि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आध्यात्मिक जागृति का पहला कदम कम से कम ये जानना है कि हम जानते नहीं है कि हम जानते नहीं है।
0: वाह,
1: आई डोंट नो।

0: That I don't know.
1: बेशक, बहुत सही।
0: योग से श्वसन प्रणाली, नींद, सोच सभी सही हो जाता है और जीवन संतुलित हो जाती है।
1: जी हाँ,
0: सहज ही सभी मानसिक रोग दूर होती जाती है क्योंकि योग मन, शरीर और आत्मा का तालमेल और नियंत्रण से एक हार्मनी बनाए रखती है।
1: जी बिल्कुल, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट करके ये काम करते हैं।
0: जी, योग का नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट होता है और तंत्रिका तंत्र में तनाव वाली जो फ्लाइट और फाइट मोड होती है, स्थिति है, उसे बाहर निकालने में गहरे आराम और रिकवरी की स्थिति में ला सकती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: ये हमारे मानसिक लचीलापन को बढ़ाता है, वेगस नर्व को एक्टिवेट उत्तेजित करती है जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है।
1: जी हाँ,
0: एक गाबा नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को बढ़ाती है जो कि चिंता को दूर करती है।
1: जी हाँ,
0: राजयोग से हमारा मस्तिष्क भी रीवायर हो सकता है और जीन्स पर भी सीधा असर पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि योग कैसे हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छी तरह से संभाल के रखता है। अच्छा दीदी, योग तो मेडिटेशन,
0: जी,
1: तो इसमें मेडिटेशन शायद इस काम को पूरा करता है।
0: जी, तो मेडिटेशन या योग के दौरान हमारे मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया होती है। तनाव से जो बीटा वेव्स उत्पन्न होता है वो अशांति और घबराहट का प्रतीक है।
1: जी हाँ,
0: राजयोग से विचार थॉट पैटर्न में परिवर्तन करते हैं, जैसे मैं शांत स्वरूप हूँ का अनुभव करते हैं तो तुरंत अल्फा और थीटा वेव्स के स्तर पर आ जाता है।
1: जी हाँ,
0: ये गहरी शांति और हीलिंग की अवस्था है। कॉर्टिसल और एड्रिनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होता है। डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स का स्राव बढ़ता है।
1: जी हाँ,
0: वैज्ञानिक सोच से पता चला है कि नियमित राजयोग करने से मस्तक का एमिग्डाला, जो डर और तनाव को नियंत्रित करता है, सिकुड़ जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय क्षमता और एकाग्रता के लिए जिम्मेदार है, मजबूत हो जाता है।
1: वाह,
0: शरीर में कोई भयानक बीमारी हो और डॉक्टर उसको दवाई से या सर्जरी से एक बार ठीक करने के बाद दोबारा नहीं होना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: लेकिन रोग दोबारा उत्पन्न हो जाता है क्योंकि उसका जड़ मन में होता है।
1: आपने ये सही बताया,
0: आप शारीरिक व्यायाम कर रहे हो लेकिन आपके मन में तनाव, अशांति है तो उसका फल नहीं भी मिल सकता है।
1: जी बिल्कुल,
0: इसी तरह अगर मन और शरीर का संतुलन बने रहे, सकारात्मक विचार हो तो रोग दोबारा नहीं आएगा।
1: जी हाँ, इसमें कोई केस स्टडी है क्या इस विषय में?
0: जी हाँ, हम यहाँ पर एक दो का उल्लेख करते हैं। डॉक्टर मोहित गुप्ता एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट जीपी पंत हॉस्पिटल पुणे के, जो अभी राजयोग ट्रेनर हैं, तो जिन्होंने अपने करियर में 13 गोल्ड मेडल और 5 सिल्वर मेडल जीते हैं।
1: वाह,
0: उन्होंने और अन्य वैज्ञानिक के साथ में अध्ययन में पाया कि तनाव से हमारे शरीर में क्रोमोसोम के ऊपर एक छोटी सी कैप होती है, वो घिस जाती है और टेलोमियर का लंबाई कम हो जाती है।
1: जी हाँ,
0: एक 25 साल के व्यक्ति का भी टेलोमियर एक 70-80 साल के व्यक्ति जैसे छोटी हो जाती है और यही कारण है कि आज जवान 25 से 35 साल की उम्र में भी अचानक हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो रही है।
1: जी हाँ, ऐसे हम बहुत सारे घटनाएं हम देख रहे हैं और हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इतने कम उम्र में क्यों ऐसा हो रहा है।
0: जी, ये सभी मानसिक अस्वस्थता के कारण ही है। इस पढ़ाई को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। शोध में ये भी सिद्ध हुआ है कि टेलोमियर फिर से पूर्ण अपनी लंबाई प्राप्त कर सकती है।
1: अच्छा अच्छा,
0: लेकिन ये कमाल कोई दवाई से नहीं, केवल योग से ही संभव है।
1: जी हाँ,
0: हार्ट डिजीज रिवर्स हो सकती है, इसी बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। डॉक्टर मोहित गुप्ता का 2003 में ब्रेन में ट्यूमर हुआ था जो कि सर्जरी करके निकालना पड़ा और इस दौरान उनको हल्का सा हियरिंग लॉस, कान में बहरापन भी आया, लेकिन कुछ ही महीने बाद दूसरा ट्यूमर ऐसे जगह पर उत्पन्न हो गया जहां पर ऑपरेशन भी संभव नहीं था, लेकिन राजयोग की शक्ति से उन्होंने 6 महीने में ट्यूमर को गायब कर दिया और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जहाँ साइंस नहीं पहुँच सकती, वहाँ योग की शक्ति ने चमत्कार करके दिखाया है।
1: आपने ये सही बताया,
0: ऐसे बहुत केस हैं। एक US वॉर वेटरन स्टोमेटिस मोरेलिस, जो एकारिया नामक एक छोटे से टाउन में रहते थे, उन्हें डॉक्टर ने लंग कैंसर बता दिया था और केवल 4 महीने की मोहलत दी थी, लेकिन उन्होंने अपने गांव इकारिया में जा करके अपने जीवन शैली, आहार और योग के प्रयोग से प्रकृति से जुड़कर 102 साल तक जीवित रहे।
1: वाह।
0: जब वो अपने वो डॉक्टर्स के पास 20 साल बाद गए तो वो डॉक्टर्स मर चुके थे और उन्होंने टाइटल दिया गया द मैन हु फॉरगॉट टू डाई। तो योग चमत्कार कर सकता है,
1: बेशक,
0: ये अभी वैज्ञानिक भी मानते हैं।
1: अच्छा, हम एक शब्द सुनते हैं, योग निद्रा, ये क्या होता है, जरा आप हमें बताइए।
0: योग निद्रा को अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक कहते हैं। इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कंट्रोल होता है और नींद न आने की बीमारी, इनसोम्निया और अन्य मानसिक बीमारी ठीक होता है। इसमें हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं और माइंड बिल्कुल सचेत रहती है। योग से हमारी वेगस नर्व, जो पैर से ब्रेन तक एक टेलीफोन लाइन की तरह है, उसको सेट कर देता है और मन, शरीर और आत्मा तीनों का संतुलन होता है और मन शांत हो जाता है। और इससे अगर हम 10 मिनट भी योग निद्रा करेंगे तो इससे हमें 4-5 घंटे की नींद की लाभ प्राप्ति होती है।
1: जी बिल्कुल। अच्छा दीदी, एक योगी का दृष्टिकोण और उसका जीवन शैली, ये कैसा होना चाहिए?
0: एक योगी संपूर्ण स्वतंत्रता और संपूर्ण स्पष्टता का अनुभव करता है और दूसरों को उनके धोखे से बाहर आने में मदद करते हैं।
1: जी।
0: वो अपना निजी स्वार्थ से परे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, वो एक गंजा व्यक्ति को कभी कंगी बिक्री नहीं करेंगे। एक कठिन परिस्थिति में मनुष्य या तो सहन करता है या सामना करते हुए मर जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन एक योगी को समझ आ जाती है कि वो जागरूक होता है और अपने दिव्य बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट से उसे एक तीसरा अधिक बेहतर विकल्प नजर आता है।
1: जी हाँ।
0: वो खुद को इस भौतिक दुनिया में एक रूहानी मेहमान समझकर आसपास चल रही हर चीज को एक अलग चश्मे से, प्रेक्षक यानी कि डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह, शरीर से न्यारा होकर सौभाग्यपूर्वक सब चीज को देखता है।
1: जी।
0: उसे एक आंतरिक सुख खुशी होती है इंद्रियों से परे। योगी रोजमर्रा की क्षण भनकुर दृश्यों से जुड़े हुए भी अनादि सत्य को जानने से, नए दृष्टिकोण से, ऊंची चेतना से इस दुनिया से उपराम ऊंची उड़ान भरती है एक गरुड़ की तरह।
1: अच्छा।
0: वो लगाव मुक्त, बंधन मुक्त होकर निमित भाव से कर्म करते हैं और निंदा स्तुति, जय पराजय, मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख में वो समदृष्टि रहता है।
1: जी।
0: एक योगी को इस नाटक की दुनिया से एक दिन का भी नहीं चाहिए।
1: जी जी।
0: उसकी वैराग्य वृत्ति होती है, वो इस दुनिया को एक चलचित्र की तरह देखता है।
1: अच्छा।
0: वो इस रंगमंच में सबको देने की भावना से आते हैं और देने में ही आनंद महसूस करते हैं। स्वस्थ आंतरिक जीवन होने से योगी का बाहरी जीवन स्वतः ही अधिक कुशल होगा।
1: अच्छा।
0: हमारा योग किससे जुड़ा हुआ है? परिवार से, कोई व्यक्ति विशेष से, अपने मन से, अपने शरीर से या प्रकृति से? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज किसी का भी परिवार, मन, शरीर और प्रकृति 100% संपूर्ण नहीं है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि जब तक परमपिता सर्वोच्च शक्ति ऊंची चेतना से जुड़ेंगे नहीं, तब तक किसी से भी जुड़ नहीं सकेंगे।
1: मतलब योग नहीं होगा।
0: जी
1: जी।
0: एक योगी का योग यथार्थ होता है तो उसे हम यथार्थ योग नहीं कहेंगे, क्योंकि आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है वो जो बीमार नहीं होता, प्रकृति में ही हलचल में है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: एक योगी का प्रयास सकारात्मक सोचने में होगा, वो दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि यानी कि ज्ञान का प्रयास करेगा।
1: मतलब सकारात्मकता के तरफ जाना पड़ेगा। जी जी।
0: उसके लिए योगी स्वयं संतुष्ट, शांतचित, पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा एक समान होना चाहिए। वो हर एक कार्य को मनोरंजन की तरह देखता है और खुशी खुशी करता है।
1: मानसिक शांति में रहते हुए कर्म निर्वाह करता है। ठीक।
0: उस पर लोग क्या कहेंगे और अन्य निंदा और बुरी से बुरी परिस्थिति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: वो हर बात को आसानी से छोड़ देगा, लेट गो करेगा। अगर योगी में ज्ञान का अहंकार है तो वो अज्ञानता से भी भयानक स्थिति होगा।
1: हमने सुना है कि हर पतन का मूल अहंकार होता है।
0: जी हाँ, जी, आपने सही कहा। संसार में सुख शांति लाने के लिए खुद के भावनाओं पर विजय प्राप्त करना होगा
1: जी।
0: इसलिए योग का सही अर्थ है स्व परिवर्तन, सेल्फ मैनेजमेंट।
1: अच्छा।
0: प्रत्येक दिन 5 से 10 मिनट योग करने से मन शांत होता है। योग से मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक संतुलन बनती है, सोच सकारात्मक हो जाता है
1: जी।
0: दिव्य बुद्धि का प्रयोग करके खुद भी शांत और संतुष्ट रहता है और औरों को भी शुभ भावना शुभकामना भेजते रहता है।
1: अच्छा दीदी, ये राजयोग जो मेडिटेशन है
0: जी,
1: ये वास्तव में क्या है?
0: राजयोग कोई शारीरिक क्रिया या मंत्र जाप नहीं है।
1: अच्छा अच्छा।
0: ये एक बौद्धिक संबंध है। राज अर्थात राजा या स्वशासन, स्वराज्य अधिकारी, और योग अर्थात मिलन या कनेक्शन, मन और इंद्रियों पर विजय,
1: मतलब खुद का राजा होना।
0: खुद का राजा होना
1: जी।
0: योग माना शांति का सांस भरना और घबराहट बाहर फेंकना
1: जी। जी।
0: भूमिकंपन में भी एक योगी स्थिर रहता है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि भूमिकंपन तो बाहर है, उसके मन में कोई हलचल नहीं।
1: अच्छा, जो व्यक्ति राजयोगी है वो क्या बिल्कुल अलग है?
0: राजयोगी एक साधारण व्यक्ति के जैसे हैं
1: जी।
0: उसका अपना आवश्यकता, शरीर निर्वाह अर्थ सभी के जैसे खाना पीना सोना होता है
1: जी।
0: लेकिन कोई आसक्ति या अपना निजी स्वार्थ नहीं होता।
1: अच्छा।
0: वो निस्वार्थ भाव से परमात्मा का सहयोगी बन विश्व कल्याण के लिए कार्य करता है
1: जी। जी।
0: राजयोगी माना अपने भावना और शक्ति को सहज ही नियंत्रण में रखना।
1: अच्छा।
0: अपने आप से सुंदर रिश्ता बनाना, अपने को सम्मान देना, अपने को स्वीकार करना, खुद को प्यार देना।
1: अच्छा।
0: जब योगी खुद को परिवर्तन करता है तो वो निस्वार्थ प्रेम का फरिश्ता बन जाता है, अपने पुरानों संस्कारों को भस्म करता है और इस दुनिया को साक्षी रिश्ता होकर देखता है
1: जी। बिल्कुल।
0: राजयोग मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अतुलनीय दवा है। बाहरी जगत और आंतरिक जगत में तालमेल बना के रखता है और अपने सत्य स्वरूप को पहचानकर सकारात्मक, शुद्ध और शक्तिशाली विचार से अपने को शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति से सदा संपूर्ण स्वस्थ महसूस करता है।
1: अच्छा दीदी, इससे हमें पता चला कि राजयोग एक ढाल जैसा है, बाहर में हलचल और इस ढाल के वजह से अंदर में शांति। तो राजयोग मेडिटेशन की विधि क्या क्या है?
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अंदर में बिल्कुल शांत स्टेबल होता है। राजयोग मेडिटेशन की विधि, इस मेडिटेशन का स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्व जागरूकता, सेल्फ रियलाइजेशन। जब ज्ञात और निश्चय हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि शरीर को चलाने वाली अति सूक्ष्म एक चैतन्य शक्ति, एक अदृश्य सितारा, एक आत्मा हूँ, जैसे ड्राइवर और कार बिल्कुल अलग होते हैं
1: जी हाँ,
0: उसी तरह जैसे गाड़ी को चोट लगती है तो ड्राइवर सुरक्षित है
1: जी।
0: इसी तरह आत्मा अविनाशी सुरक्षित है। महसूस कीजिए कि आत्मा का मूल स्वरूप ही शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता है। एक गहरी सांस ले और इस शांति को अपने भीतर महसूस कीजिए। ओम शांति, मैं शांत स्वरूप हूँ। अदृश्य सितारे से चारों तरफ शांति की प्रकमन फैल रही है। ऐसी स्थिति पहली स्थिति होनी चाहिए, अपने आत्मिक रूप में बिल्कुल सेट। अब दूसरी है, अब अदृश्य सितारा परमात्मा सर्वोच्च जो शांति, प्रेम, आनंद के सागर, पावर बैंक है, उससे जुड़ना है। तो हम जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो शक्तिहीन आत्मा परमात्मा से शक्ति गुण अपने अंदर आत्मसात करती है और बिल्कुल बाप समान शक्तिशाली महसूस करती है। जितनी देर हम परम धाम लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में ज्योति बिंदु परमात्मा के साथ का अनुभव करते हैं, उतने ही अपने नकारात्मक संस्कार भस्म होते जाते हैं और आत्मा एक पवित्र फरिश्ता बन जाती है। उसका सोच बिल्कुल परमात्मा सुप्रीम सोल जैसी हो जाती है, जो कि आत्मा का परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु भी है
1: जी।
0: अब तीसरा स्टेप है शक्तियों का वितरण। जब हम परमात्मा से शक्ति भर के फुल हो जाते हैं, अब अदृश्य सितारा शक्तियों से भरपूर होकर पूरे विश्व में एक लाइट हाउस की तरह अपनी वाइब्रेशन, किरणें, शांति, प्रेम, आनंद आदि फैलाती है और सबको शुभ भावना, शुभकामना की खुशबू बिखेरती रहती है। वो एक हंस की तरह सब में खाली विशेषता ही देखती है।
1: अच्छा, राजयोग के जब हम शुरू करते हैं तो हमने सुना है कि कुछ अजीबोगरीब विचार आने लगते हैं, तो क्या ये सही है?

0: ऐसे पहले पहले बहुतों के साथ होता है,
1: जी
0: तो पहले पहले ऐसा हो सकता है, अगर हम किसी कमरे में बहुत दिन बाद झाड़ू लगाते हैं तो धूल हवा में उड़ती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: इसी तरह जब हम साथ बैठते हैं तो मन में दबे हुए विचार ऊपर की ओर आने लगते हैं।
1: जी,
0: हमें विचारों से लड़ना नहीं है बल्कि विचारों का दिशा बदल देना है।
1: अच्छा अच्छा।
0: शुरुआत में हम ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी,
0: हर एक या दो घंटे के बाद हम एक मिनट का ब्रेक लें और एक गहरी लंबी सांस लें और स्वयं को अपने पारस बुद्धि से एक अदृश्य आत्मा हूँ, स्वान स्वरूप हूँ, सूक्ष्म और ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ मेरे साथ है ऐसा महसूस करें।
1: जी,
0: स्वयं भगवान मेरे साथ है और परम धाम की शांति, साइलेंस, सौम्य प्रकाश परमात्मा के साथ बिल्कुल सुरक्षित, जैसे एक बच्चा माँ के गोद में अनुभव करता है वैसा अनुभव करें।
1: जी,
0: दूसरे, आप सुबह अमृत बेला 3 से 5 बजे योग के लिए सर्वश्रेष्ठ है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि उस समय सभी सोए हुए होते हैं और वातावरण में एक आध्यात्मिक शांति और शुद्धता होती है।
1: जी जी।
0: इस समय हमारे अवचेतन मन जागरूक होता है और सकारात्मक विचार एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह सोख लेती है और हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। जब सुबह सुबह सबसे पहले सबसे ऊंची चेतना सुप्रीम शक्तिशाली भगवान से हम जुड़ते हैं तो सारा दिन चार्ज रहे।
1: अच्छा दीदी, हमारे श्रोताओं को राजयोग का एक व्यवहारिक अनुभव दे पाएंगे हमारे रेडियो के माध्यम से?
0: जी हाँ जरूर।
1: तो श्रोताओं आप लोग तैयार हो जाइए, दीदी जैसे बता रहे हैं आप थोड़ा उनके साथ ये अनुभव ले लें। जी,
0: ओम शांति। आंखें खुली या बंद हो सकती है, अभी सभी शांत होकर के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखिए, शरीर को बिल्कुल हल्का और ढीला छोड़ दें, मानो ये शरीर है ही नहीं। एक गहरी लंबी सांस लें, कुछ देर रोकें और धीरे से छोड़ें। ऐसे ही 2-3 बार सांस पर ध्यान दें। जैसे ही सांस छोड़ते हैं मन के सारे विचार शांत हो रही है, बुद्धि शक्तिशाली होती जा रही है, संस्कारों में पवित्रता और हृदय में प्रेम, रहम, दिल और क्षमा भाव उमड़ रहा है। अब अपने पारस बुद्धि, समझ, डिवाइन इंटेलेक्ट से देखिए अपने आप को एक अदृश्य चमकता हुआ सितारा। अनंत आकाश में चांद, तारे, सितारे से भी दूर, आवाज से परे, समय से परे, एक लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, जहाँ एक मुझ जैसा ही अदृश्य सितारा है, वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान, गॉड, परमात्मा, सबके पिता, सर्वोच्च, पवित्र और सबसे शक्तिशाली और धनवान, ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर शिव बाबा विराजमान है। अनुभव करें परमात्मा से पवित्र शक्तिशाली किरणें सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही है। एक फाउंटेन, फवारे की तरह मैं परमात्मा की छत्र छाया में पूरी तरह सुरक्षित हूँ। सारी चिंताएं, सारा तनाव इस दिव्य प्रकाश में प्रवेश करते ही विलीन हो गया है और अदृश्य सितारा बिल्कुल शक्तिशाली और भरपूर महसूस कर रही है। यह अदृश्य सितारा का अपना बेहद का परमानेंट हाउस है, घर है, स्वयं भगवान के साथ उसका पूरा अदृश्य परिवार है, सभी चमकता हुआ सितारा, सभी बेफिक्र बादशाह। अदृश्य सितारा अपने पिता, शिक्षक और सदगुरु के गोद में, बिल्कुल एक माँ के गोद में बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही स्वयं परमात्मा का निस्वार्थ प्रेम का अनुभव कर रहा है। यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं, कोई छत नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। सभी सितारे निराकार बच्चे जैसे मासूम लेकिन समझदार हैं, सभी बाप समान गॉड लाइक हैं, सभी अदृश्य प्रिंस बेफिक्र बादशाह, राजाओं के राजा सच्चिदानंद के संतान हैं। बाबा के साथ निस्वार्थ प्रेम और परम धाम की शांति में अति इंद्रिय सुख का झूला झूल रही हूँ। इस सुख, शांति, बंधन मुक्त, स्वतंत्र, भरपूर अवस्था को कुछ देर महसूस कीजिए। अभी अदृश्य सितारा अदृश्य मेहमान बनके इस सृष्टि रूपी रंगमंच में अनुभव करने के लिए इस शरीर रूपी डॉल गेस्ट हाउस में अवतरित होता है। वो जागरूक है, होश में है, उसे पता है कि ये एक फॉरेन लैंड है, यहाँ का एक दिन का एटम भी उसका नहीं है,

0: लेकिन वो देखता है कि सभी अदृश्य राजकुमार अपने को डॉल मान बैठा है और इस फॉरेन लैंड को अपना मान बैठा है और अपना सत्य स्वरूप, सत्य पिता और सत्य घर को बिल्कुल भी भूल गया है। अब अदृश्य मेहमान का एक ही कर्तव्य है, सबको होश में लाना, उसका सत्य परिचय, परमात्मा का सत्य परिचय देना। ओम शांति।
1: वाह, इस राजयोग के माध्यम से अपने स्वरूप को हम पहचान सकते हैं
0: जी हाँ।
1: और इसी में मानसिक शांति छिपी हुई है
0: जी हाँ।
1: जी जी, तो आप हमारे श्रोताओं को अंत में, हमारे हाथ में शायद समय भी बहुत कम है, तो आप हमारे श्रोताओं को आपके तरफ से कुछ संदेश दे दीजिए।
0: ये तो एक छोटा सा अनुभव है, जब हम रोज इस महासागर परम धाम में डुबकी लगाते हैं, घड़ी घड़ी अपने सत्य पिता को याद करेंगे तो हमारी जिंदगी स्वतः ही खुशहाल, स्पष्ट और तनाव मुक्त हो जाएगा। तूफान भी तोहफा बन जाएगा और हमारी मानसिक स्थिति हमेशा स्थिर और संतुलित रहेगी। तो सभी सुखी रहें, सभी का भला हो, इसी के साथ हम सबको धन्यवाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप अपने कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए, हमारे साथ अपने विचार व्यक्त किए, जिससे हमारे जीवन में सुधार आ सकती है, हमारे श्रोताओं के जीवन में सुधार आ सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते।
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बातचीत का विषय था मानसिक स्वास्थ्य और राजयोग। हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे ब्रह्म कुमारी रंजना अग्रवाल और मैं आपके साथ सुबीर दास गुप्ता।

0: Eligibility cum entrance test NEET UG 2026 re-examination is currently underway at over 5,000 centres across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates amid tight security. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. The NTA has said that student-friendly facilities are being provided at centres, including drinking water, ORS, ambulances and shaded waiting areas for parents. Ahead of the examination, the National Testing Agency conducted nationwide mock drill yesterday to verify all systems jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan has assured that all necessary arrangements were already made for the smooth conduct of the exam. President Draupadi Murmu today attended the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University in Jabalpur, Madhya Pradesh. On the occasion, she awarded gold medals to meritorious students from different faculties. Madhya Pradesh Governor and Chancellor Mangubhai Patel, Chief Minister Dr. Mohan Yadav and Higher Education Minister Inder Singh Parmar were also present at the ceremony. Addressing the gathering, the President said that Rani Durgavati, after whom the university is named, was a symbol of courage, bravery and valour. She urged people associated with the university to work for the empowerment of tribal communities, disadvantaged groups, especially young girls.
1: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रति वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें
0: U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran from Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf, has named Minhap 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation's observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions three indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centres across country and 14 centres abroad amid tight security. US Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया कहा योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
4: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
5: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
2: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
6: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताब ते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
2: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन

0: भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान के संसद अध्यक्ष MB कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी शिलीगुड़ी अनुष्ठान सुनछेन 711 किलोहर्ट्ज प्रचार तरंगे एवं न्यूज ऑन एआईआर एपे। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনবেন আকাশবাণী কার্শিয়াং কেন্দ্র থেকে প্রচারিত নেপালি অনুষ্ঠান এবং নেপালি সমাচার।

यह आकाशवाणी का सिलीगुड़ी केंद्र है। शुरू होता है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। पहले पेश है रोजा फिल्म का ये गीत हरिहरन की आवाज़ में।

श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उस

0: के समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की

0: गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि

0: मैदान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, আমাদের এই গৌরবময় সম্পদ, যোগাভ্যাসকে আমরা সাথে নিয়ে এগিয়ে চলি এবং পরম করুণাময় ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমাদের চোখে মঙ্গল আলোক জ্বলে উঠুক, সেই মঙ্গল আলোকে আমরা পথ চলি। সময় একদম শেষ, মনের জাননা অনুষ্ঠান থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আবারও আপনাদের সাথে কথা হবে অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো অনুষ্ঠানে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। এতক্ষণ শুনলেন লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠান। আকাশবাণী কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথমে হিন্দি এবং তারপর ইংরেজি সংবাদ।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে আশুতোষ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।